विदारवाश हम अकशवरुं तिमंगे वेरी रस्कलांगे सीधा विकम्बा तिदमगा तिमंखले फानम मगुदेख्य विये ऐ सीधा विकम्बा दीने ऐ बातलगे मगुं एक्किबावे हक्कुगे मगत थबावे गिम्बा इब्राहीम गे फानगे दीने अधि मुश्रिकुंगे तेरिंग एकलेग फानुनुवे

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुन कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एक अन्य दिवे राज्य के लड़ूं
3: कोम्मे उमुरका
4: कोम्मे फांतियका
3: कोम्मे गिंतियका दिवे राज्य के अड़ू इंहा सतरसे के साल इसनुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
4: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: गड़ी मेंदुरो एक जे थिबे फ्रंगाडो समुद्री गेंदवनी दिए राज्य के अड़ू

0: हंगार अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य चाडूं
3: अहाशे बुनाना रई तुम कुरम बेणु वा स्वादुत
2: सियासी फरातका गुलम बदही कुरमा
3: अहाशे बुनाना सियासी मैदानु गा हरका तिरवा फरातोगे सियासी ततुर अहाशे बुनाना
0: हुकुरदो मेंद्र फह दे जहर रिपीट होम दो गरे नो ए जहर आदि अंगार दो गरे मेंदम एक जहर
2: इंहा सतरस्ते का 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
3: अहाशे बुनाना

0: टर्बुलेंस,
1: यही बातें होती है जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। अच्छा कौन है जिसके पेट में बात पचती नहीं है?
2: रणवीर।
3: बोलो मैं, अगर आप मुझे कोई सीक्रेट बोल रहे हो मुझे किसको तो बोलना पड़ेगा।
4: मेरे अभी दिल की बात बाहर निकलने वाली, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार।
5: एक्चुअली बहुत खुश होते हैं जब भी टीम में इतना गाली खाते हैं और जब भी ऑपोजिट में ऐसा विकेट लेने को मौका मिलता है।
4: मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
5: इंडीड।
0: जब ये शो अनाउंस हुआ ना भाजी कि इतनी कंट्रीज में आएगा, मेरे को भी पक्का यकीन हो गया कि ये शो मेरे अलावा कोई कर सकता है। तो
6: आपकी वाइफ बैठी ना रितिका उधर
7: जी,
6: आपके लिए मैं उधर बैठना चाहती हूँ उनके बगल।
0: क्या कमी थी मेरे में?
8: ये दे रहे हैं आपको
0: दो आलिया भट्ट को।
1: अगर कोई चीज पूरी फैमिली के लिए फिट है तो हिंदुस्तान में हिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शो
6: सीक्रेट हो, तोहफा कबूल करो।
4: सुपर हिट सर, सुपर हिट।
1: देखो भाई देखो, नेटफ्लिक्स पे देखना नहीं भूलना।

0: हांगार अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मेंदम बार गड़ तिरी हूं
1: हांगार हमें कनी दिवे राज्य जाडूं